0: Tomorrow morning's test in Cape Town.
1: World class team and the physical dominant. I don't think we'll get away with that if we start like that again. So we need to turn up and also be accurate.
0: Kickoffs at 3:10 a.m. And in NPC today, Taranaki are against Canterbury at 2 in New Plymouth. Otago hosts Waikato and Dunedin at 5. And Manawatu face North Harbour at 7:10 in Palmerston North.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Weather update.
5: ऑलराइट विदर्भ के बारे में तो आपने सुन लिया है कि हैवी रेन वार्निंग ऑरेंज बैंड का ये लागू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आज सुबह 9 से कुछ गंभीर बारिश का सामना काफ़ी लोगों ने किया है. एंड राइट थ्रू टिल 2 AM संडे 30 अगस्त हैवी रेन के लिए वार्निंग जारी किया गया है. फ्यू शावर्स जो कैन बी हैवी एट टाइम्स विद लोकलाइज डाउनपोर्स पॉसिबल फ्रॉम इवनिंग. Northerly turning strong suddenly in the afternoon. तो अपना ख्याल रखें, अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर बाढ़ चढ़ सकती है, please do what is right. समय रहते ही आप अपना कुछ बंदोबस्त कर लें ताकि कोई भी दिक्कतों का सामना आप ना करें.

Hey, hello, 29th of August 2026. मैं हूं जिकाश एंड रेडियो पब का सिलसिला शुरू हो चुका है. बाहर से अभी जब मैं आया अंदर तो बारिश बहुत ही मज़ेदार हो रही है. मतलब अगर आप छुट्टी पर हैं, घर पर हैं, तो इस बारिश का फुल मज़ा आप ले सकते हैं, चाहे वो हो पकौड़े पकाकर या फिर एक प्यारी सी मूवी चलाकर विथ एन ऑसम बेवरेज का मज़ा लेते हुए. मेक श्योर यू एन्जॉय दिस राइड. हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनके लिए ये बारिश सरदर्द बन चुका होगा, क्योंकि सर्दी है, घूमना चाहते थे, इधर उधर कुछ प्लान्स थे, लेकिन बारिश के कारण शायद यू हैव टू पुल बैक. जो भी हो, समय का भरपूर उपयोग आप कीजिएगा. वैसे वेदर में आपने तो सुना है कि रेन वार्निंग जारी किया गया है, तो अगर आपके इलाके में रेन वार्निंग है, प्लीज़ मेक श्योर आप उन वार्निंग्स को ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि आप किसी भी परेशानी से दूर रहे. तो आइए शुरुआत करते हैं. शनिवार है, रेडियो पब शुरू हो जाता है 12 से लेकर 6 बजे के बीच में, एंड मैं जिकाश आपके साथ शामिल हो चुका हूँ. बहुत सारी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें प्लस स्पोर्ट्स की जानकारियाँ भर भर कर हम लेकर आए हुए हैं. आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, कल रक्षाबंधन आपका कैसा गया, ये हम जानना चाहते हैं आपसे. हमारे रक्षाबंधन विनर्स को भी हम कंग्रेचुलेट करेंगे, और वी विल बी बिल्डिंग अप फॉर द फादर्स डे जो है संडे को, नॉट दिस संडे, नेक्स्ट संडे. तो इसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन इससे हटकर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर चीज़ आज हम आपके लिए संजो कर लाए हुए हैं. तो बस एंजॉय करने के लिए आप तैयार हो जाइए. आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवर. नमस्ते, क्या ओरा.

0: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: That's right, मैं हूं जिकाश और आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे कहना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव ये शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर कल से शुरू हुआ है, कुछ जगहों पर आज पहली रात की पूजा की जाएगी। तो कहां पर आप जा सकते हैं, लेट्स लुक इनटू दिस। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, आज से शुरू होने वाला है टिल 4th of September फ्राइडे तक, एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाओ में। इसके अलावा राम कृष्णा मंदिर जो 25 ऑनस्लो एफ मनुकाओ में है, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑल द वे थ्रू टू 4th of September एट राम कृष्णा मंदिर 25 ऑनस्लो एफ मनुकाओ। हर रात पूजा 7:30 PM से शुरू होती है। श्री राम मंदिर पर भी जो 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में है, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव ये मना रहे हैं फ्रॉम सैटरडे 29 अगस्त मतलब आज से लेकर थर्सडे 3rd September के बीच 7 PM से पूजा शुरू होगी विथ आरती। फ्राइडे 4th September को 5 PM से पूजा शुरू होगी और फिर हवन, 7 PM पर आरती, 7:20 PM पर कथा। तो ऑल द वे थ्रू टू 4th September तक यहाँ पर मतलब श्री राम मंदिर पर ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। औतेरवा सनातन संगम संस्था ये सभी अपने फॉलोअर्स को, भक्तों को बुला रही है एट वुमन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग एट 2 Southern Crescent पापाटोटोए ऑकलैंड में, और इसके लिए खूब तैयारी की गई है कल और कल से पहले वाली रात्रि को। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे टू दी मैनेजमेंट ऑफ औतेरवा सनातन संगम संस्था, जो कथाकार पंडित कृष्णिल शेखर महाराज के साथ में आज से कृष्ण जन्माष्टमी की कथा शुरू करने वाले हैं। हर रात कथा 7 से 9 PM के बीच में होने वाली है। 4th September को यहां पर पूजा समाप्त होगी। इसके अलावा नॉर्थ शो में भी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और 29 अगस्त से 4th September के बीच में यहां पर पूजा होने वाली है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगा है लेकिन ये अपलोड नहीं हो रहा है, होल्ड ऑन। वैसे अगर आप भी कृष्ण जन्माष्टमी या फिर कोई भी कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर हमसे बताइए, ताकि आपके हो सके तो हम आपके इवेंट्स में शामिल होंगे, या फिर आपकी जो जानकारी है ये तमाम लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं थ्रू गेटिंग इन टच विद अस थ्रू buzz@humfm.com पर। तो और भी जानकारियाँ बस इस गीत के बाद में हम आपके लिए पेश करेंगे।

Radio Pub. राइट, तो दो और जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी की सूचना हमारे पास आई हुई है। श्री हनुमान मंदिर नोत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज से लेकर 4 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा। एंड ऑन 4 सितंबर जो पूजा होगी ये समाप्त होगी बिटवीन 12 AM एंड 12:30 AM, क्योंकि मध्य रात्रि का सेलिब्रेशन जैसे काफ़ी लोग मनाते हैं, उसी तरह से श्री हनुमान मंदिर पर नोत्रों में ये पूजा समाप्त करने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोटे 4x3 ओनस्लो एफ पापाटोटे में भी मनाया जा रहा है 7 PM से लेकर 8:30 PM के बीच में। कल से यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है एंड 4 सितंबर को यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। वैसे थोड़ी देर पहले ये क्रोम ब्राउज़र मेरे से धोखा कर गया, ही जस्ट गॉट हंग अप एंड जब मैंने रिफ्रेश किया तो एक प्यारा सा पेज मुझे मिला और उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो द वन दैट गॉट माई अटेंशन वॉज कि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। कितनी जरूरी बात यह है, सोचिएगा इसके बारे में। आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज को।

Radio Pop. प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स यानी कि हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं और रोबा के जरिए प्लस 104.2 एफएम के जरिए आप रेडियो पब का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। कुछ लोगों ने अभी कॉल्स किया था एंड बताया है कि आज क्या कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर कीपिंग मी कंपनी। तो हमारे फोन लाइन्स का नंबर तो आपको मालूम है, 0800-004-866 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, चाहे ओनिया या ओफिया कुछ ज़रूरी बातें अगर आपको बतानी है, कुछ मैसेज हो तो हमारे पास आप 5599 पर भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके लिए एक क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज है दी 29th ऑफ अगस्त, ये तो सभी जानते हैं। टुमोरो हो जाएगा 30th ऑफ अगस्त, तो भाई इसमें बड़ी बात क्या है? वेल टुमोरो सुबह 3 बजे के बाद एक और एक धमाकेदार खेल होने जा रहा है बिटवीन दी ऑल ब्लैक्स एंड साउथ अफ्रीका। हमारी ऑल ब्लैक्स टीम जो साउथ अफ्रीका के टूर पर है, साउथ अफ्रीका से सेकंड मैच खेलने जा रही है। एंड द लास्ट वन दैट हैपन लास्ट संडे सुबह 3 बजे, इसको मैंने देखा और आई वाज स्टन्ड बाय द परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल ब्लैक्स, क्योंकि सेकेंड हाफ में इन्होंने दे जस्ट स्टेप्ड अप देयर गेम। तो क्या उसी तरह का खेल आज या फिर कल सुबह 3 पर ये दिखाने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक, इज स्प्रिंग बॉक्स दे आर गोना टेक वन बैक फ्रॉम ऑल ब्लैक्स टू मेक इट वन ऑल, कि आपको ये लगता है ऑल ब्लैक्स आर गोइंग टू गेट 2 from 2 कम टुमोरो मॉर्निंग? अपना प्रेडिक्शंस हमारे पास भेजे। और पॉइंट्स की बातें करें तो पिछले सप्ताह ऑल ब्लैक्स ने साउथ अफ्रीका को 33-16 से हराया है। उसके बाद में देयर वाजंट too much rest for the All Blacks, क्योंकि All Blacks ने 26th August को Johannesburg Park में 10-bet Lions से खेला है and they narrowly got over that, 41-35 से All Blacks की जीत हुई। and now Sunday morning कल सुबह 3 बजे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर से खेल रहे हैं। तो अपना predictions हमारे पास आप भेजें, is it gonna be All Blacks या फिर साउथ अफ्रीका, Springboks या फिर All Blacks? 5599 पर अपना प्रेडिक्शंस भेजे कि कौन जीतने वाला है।

0: Yo.
1: Big Radio Pub. You're listening to Chikash.
2: Now, if you believe in the higher power, ki koi supreme being hai that we all look up to, agar aap aisa vishwas karte hain, to aap ye bhi mante honge ki prarthnaon mein, duaon mein, prayers mein bahut shakti hoti hai. So, नेपाल के बारे में आपने तो सुना ही होगा और कितनी भारी दुविधा में वो कंट्री है. आई वुड लाइक यू गाइस टू प्रे फॉर नेपाल. कृष्ण जन्माष्टमी में जा रहे हैं, टेंपल्स जा रहे हैं, अगर आप मॉस्क्स जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाले उन लोगों के लिए जो लोग दुख तकलीफ का सामना कर रहे हैं इन नेपाल, क्योंकि आई जस्ट कांट इमेजिन द सफरिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू. ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है, ये जो बाढ़ आई है इट वॉजन्ट प्रेडिक्टेड और समय ही नहीं मिला लोगों को तैयारी करने के लिए, लेकिन जो हो गया अब उसका सामना वहाँ पर लोग कर रहे हैं. इसके लिए आप भी अपनी मदद पहुँचा सकते हैं एंड donate.wfp.org वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. अगर कोई भी दुविधा आ जाए या फिर इमरजेंसी आ जाए और उस इमरजेंसी में खाने की चीज़ें भी ना मिले लोगों को तो दुख और भी बढ़ जाता है. तो यू कैन गो टू donate.wfp.org. यहाँ पर जितना हो सके वन ऑफ सिंगल डोनेशन आप कर सकते हैं. ऑप्शंस यहाँ पर शुरू हो रहे हैं फ्रॉम $30 से, लेकिन उसके नीचे आपसे जो भी बन सके $5, $10, अगर आप में वो सामर्थ्य है तो आप डोनेशन करें. एंड द डोनेशन पेज इज donate.wfp.org. नेपाल फ्लड्स के लिए आप अभी जाकर डोनेशंस कर सकते हैं. जितना भी हो सके आप अपनी तरफ से मदद पहुंचा सकते हैं.
3: हेलो, पूछता कौन है?
4: दोस्तों बाजी.
5: Sing is free.
4: Yeah.
5: Sing is free.

0: Gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Say goodbye to winter.
4: Goodbye.
3: And hello to spring.
4: Hello.
3: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye, winter.
4: Goodbye.
3: Hello, spring.
4: Hello.
3: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezaar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swaad har ghar ke liye.
6: When India comes to town, Ayodhya Rowa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho nzc.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: Radio Pub.
9: पंद्रह मिनट रह चुके हैं एक बजने में. अभी आपने ट्यून किया है, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन रेडियो पब. मैं हूं जिकाश एंड मैंने सवाल आपसे किया है कि प्रेडिक्शंस आपको करना है. ऑल ब्लैक्स और साउथ अफ्रीका का मैच कल सुबह न्यूजीलैंड समय अनुसार 3 o'clock से शुरू होने वाला है विद द हाका. ऑफकोर्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू वॉच. तो मेक श्योर कि इसके लिए आप प्लान आउट ज़रूर करें, हैव एन अर्ली नाइट टुनाइट, ताकि तड़के सुबह कल जाकर आप अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें. ना एक बात मेरे ख्याल में, मेरे जहन में अभी आई थोड़ी देर पहले कि हमारे बीच में लिसनर्स में क्या कोई साउथ अफ्रीकन इंडियन है. जैसे कि आई एम फिजियन इंडियन, फिजी से इंडियन हूँ और इंडिया वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन साउथ अफ्रीका से हमारे बीच क्या कोई है जो इंडियन है एंड समवन हु इज़ सपोर्टिंग द साउथ अफ्रीकन टीम. क्योंकि अभी तक बहुत सारे मैसेज आए हैं एंड 98% लोगों ने कहा है कि दे वांट द ऑल ब्लैक्स टू विन, दे थिंक द ऑल ब्लैक्स वुड विन, स्पेशली जिस तरह का लाइनअप हो चुका है. नाउ एलिया दिस वीक रिची मोंगा डोन द नंबर 10 जैसे, लेकिन द प्लेयर्स लिस्ट दैट हैव कम आउट फॉर टुमोरोज मैच, इसमें रूबन लव ये नंबर 10 पर नज़र आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं रूबन लव. वॉज चेकिंग आउट सम वीडियोज़, 60 मीटर्स अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट से ये कन्वर्जन्स अपना ट्राई कर रहे हैं. तो अपनी तैयारियां ये कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऑल ब्लैक्स आर गोना स्नैच अनदर वन अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका कम टुमारो मॉर्निंग राइट इन देयर होम टाउन, इन देयर होम ग्राउंड? एंड अगर हमारे बीच में कोई है साउथ अफ्रीकन इंडियन, अगर आप किसी को जानते हैं भाई, उनको बताएं कि हमें सुने और हमें अपनी राय बताएं राइट हियर ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑन 5599.

Yo. Big Radio Pub. एक बज चुके हैं. इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं रेडियो पब में. हैवी रेन वार्निंग ऑरेंज बेड का लागू किया गया है ऑकलैंड एंड ग्रेट बैरियर आइलैंड के आसपास. 17 आवर्स फ्रॉम 9 AM दिस मॉर्निंग, सुबह, कल सुबह 2 बजे के बीच ये वार्निंग लागू रहेगा, जहां पर अराउंड 60 to 100 millimeters ऑफ रेन ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है. पॉसिबली मोर इन लोकलाइज डाउन पोस्ट. पीक रेट्स ऑफ 15 to 25 millimeters पर आवा, तो काफ़ी गंभीर बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में. बट पॉसिबली 25 to 40 millimeters पर आवा इन डाउन पोस्ट मेनली फ्रॉम दिस इवनिंग. आज शाम को ज़्यादा बारिश हो सकती है. लो चांस ऑफ अपग्रेडिंग टू ए रेड वार्निंग. इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स मे राइज रैपिडली. सर्फस फ्लडिंग हो सकता है. स्लिप्स एंड डिफिकल्ट ड्राइविंग कंडीशंस भी पॉसिबल है. तो अपना प्लान्स आप ज़रूर देख लें कि क्या ये अफेक्ट होने वाला है विद द डाउनपोर. अगर कोई भी रिस्क है तो इसको मिटिगेट करने की कोशिश कीजिए, और जो भी करें मेक श्योर यू आर सेफ आउट देयर. ऑलराइट, आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं. पिछले घंटे पर हमने आपसे प्रिडिक्शंस मांगा है, एंड 98% ऑफ पीपल हैव सेड कि ऑल ब्लैक्स विल कम आउट विक्टोरियस. लेकिन जितना मैं चाहता हूँ कि ऑल ब्लैक्स जीते, आई थिंक ऑल ब्लैक्स के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है, एंड काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है उनकी लास्ट वीक. तो दे विल बी आउट इन फुल फोर्स टू प्रूव देयर पॉइंट एज वेल. तो it might be a close one tomorrow morning, and I even think that South Africa might just edge the All Blacks. ये मैं सोच रहा हूँ ना. अगर आप betting कर रहे हैं, do not take my advice. आपने जो भी सोचा है उसके अनुसार ही अपने bets अपने teams पर लगाएं. स्वागत कर रहे हैं आप सभी का on हम रेडियो पब में. मैं हूँ जिकाश.

ना कितने लोग वहाँ पर आउटसाइड दिया है आउट दिया है जो रोवा पर हमें सुन रहे हैं. आई लाइक टू नो अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं ऑन रोवा, ड्रॉप मी अ मैसेज 5599 पर. आप कहाँ पर है और अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है. लेट्स सी कि कौन कितना क्रिएटिव आज बन रहा है, टेकिंग एडवांटेज या फिर स्टेइंग अवे फ्रॉम द रेन. किस तरह से आज आप अपना समय बिता रहे हैं, छुट्टी है आपकी लेकिन बारिश हो रही है, तो शायद जो आपने प्लान बनाया था इट्स नॉट गोना वर्क, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं. 5599 पर आप हमें मैसेज भेजिए. रोवा पर आप हैं अगर, तो आप क्या कर रहे हैं और कहां पर आप हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं. कल सुबह तो हमने बताया कि ऑल ब्लैक्स और साउथ अफ्रीका खेलने वाली है, और उसके बाद में सुबह 7 पर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भी, ये दोनों आमना सामना करने वाले हैं.

Radio Pump. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश. Alright, social media ban के बारे में आप क्या सोचते हैं? दो लोगों ने call किया and I was expecting कि कोई कहेगा yes it is good and कोई कहेगा no it is not and that's exactly what happened. दो लोगों ने call किया, किसी ने कहा कि मेरे घर में बच्चे हैं and they are always stuck to their phones, social media पर वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं, content upload करते हैं और घर पर they are unseen. मतलब phone में ही रहते हैं, खाने के समय दिखते हैं और फिर उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, आते हैं, खाते हैं और फिर फ़ोन्स पर चले जाते हैं. इतनी ही इंटरेक्शंस होती है. फिर इधर किसी ने कहा है कि माय किड क्रिएट्स सोशल मीडिया कंटेंट एंड शोज हिज टैलेंट, सो आई डोंट थिंक दैट सोशल मीडिया शुड बी बैन फॉर 16 एंड अंडर. नाउ दिस इज़ टैलेंट, अलग बात है, इसको मैनेज किया जा सकता है थ्रू एन अडल्ट अकाउंट. लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का अप्रोच है, द हार्म दैट सोशल मीडिया ब्रिंग्स टू किड्स, इसको कर्ब करने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि अभी आपने वो लॉसूट के बारे में सुना होगा जहाँ पर मेटा हैज़ अग्रीड टू सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉसूट इनके अगेंस्ट में किया गया था फ्रॉम 29 स्टेट्स इन अमेरिका एंड देव लॉस्ट द केस एंड दे आर पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्योंकि इस केस में उनकी हार हुई है. उन्होंने मान लिया है कि Meta, the content on Meta do harm the kids. तो इस harm से बचाने के लिए government is proposing social media ban for 16 and under. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं on 5599.

ऑलराइट, तो सोशल मीडिया बैन फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 16, ये प्रपोज किया गया है, इस पर काम जारी है. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कीप लेटिंग मी नो थ्रू मैसेजिंग ऑन 5599. अमीर मैंगरी से आपने मैसेज किया, कॉल किया एक्चुअली. थैंक यू फॉर योर कॉल एंड यू आर इन सपोर्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया बैन, क्योंकि आपका मानना है कि किड्स नीड टू स्टॉप स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन tablets on their screen and they need to be out there in the society developing communication skills or one-to-one people se baate kare aur people skills develop kare. Another interesting point to look at, and phir aapne message kiya ki you are enjoying the playlist. Oh wow, thank you. Best app to listen to is Rover. Thank you Amir for sticking with us. Agar aap bhi Rover ko sun rahe hain to बताएं हमें कहां पर हैं आप एंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे. कुछ अलग खबरों में, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन रोविंग तो आपको जानकर खुशी होगी कि न्यूजीलैंड मैन्स पेयर बेन टेलर एंड ओली वाल्च, दे हैव वॉन द वर्ल्ड रोविंग चैम्पियनशिप टाइटल. दे हैव बिकम, दे आर बैक टू बैक वर्ल्ड चैम्पियंस एंड टू टाइम चैम्पियंस बेन टेलर एंड ओली वाल्च finished line to line in the men's pair at the World Rowing Championship on Saturday morning. The Kiwi pair held off continuous challenges from Australia and Italy to claim back-to-back world titles, stopping the clock at 6 minutes 16.62 seconds, jahan par Australia finished at 6 minutes 18.5 seconds, followed by Italy at 6 minutes 19.68 seconds. Welch, jo sirf 22 years ke hai, noted the increased pressure from competing crews this season. Unka kehna hai ki, just stoked to get it done, another world title, it's pretty awesome, all this hard work paid off for the year, so it's really satisfying. Congratulations to Ben Taylor and Ollie Welch, they've made New Zealand proud.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Boat plus ute equals butte. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड।
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाओ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Oh hey, if you haven't received your enrollment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
9: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
10: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18 Volt Pruning Saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Yeah.
13: Big, big, big radio pub.
14: रेडियो पर मैं मजकाश आपका साथ दे रहा हूँ। हमने बातें की हैं अबाउट सोशल मीडिया बैन। क्या आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड में कितने उम्र पर यू आर अलाउड टू हैव योर फेसबुक अकाउंट? नाउ दिस नो रेगुलेशंस जो बच्चों को रोक सके। बच्चे अगर उन पास फ़ोन है, दे कैन डाउनलोड द ऐप एंड दे कैन पुट इन देयर फेक एज, देयर फेक डेट ऑफ बर्थ टू गेट एक्सेस टू फेसबुक, क्योंकि इस पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, अनलेस पेरेंट्स आर रियली गुड एट इट, जो मोनिटर करते हैं एंड दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एप्लीकेशंस, विच आई थिंक एवरी पेरेंट शुड डू। दे शुड बी अवेयर ऑफ बच्चे अपने फ़ोन्स पर, टैबलेट्स पर कौन से ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। अगर यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूट्यूब किड्स वीडियोज़ ओनली। तो ये बातें ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آفیشلی فرام فیس بک ان نیوزی لینڈ کتنے عمر پر فیس بک اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے؟ ویل اٹ از 13 ایٹ دا مومنٹ. اف یو ہیو اف سم ون پٹس دیئر ایج ایز 13 ایئرز اولڈ, مان لیا جائے ابھی سے 13 سال پیچھے کرو تو 2013 ایئر آف برتھ اگر 2013 ہے تو دے کین گیٹ ایکسیس ٹو اے فل فیس بک اکاؤنٹ. اینڈ فیس بک پر کنٹینٹس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں, دے آر اے لاٹ آف پیپل آؤٹ دیئر ہو آر پٹنگ گاربیج آن فیس بک. تو اس کے بارے میں آپ سوچیں, جو بینس آ رہے ہیں شاید اس کے بارے میں پبلک کی رائے لی جائے, تو میک شیور کہ اپنے وائسز کو آپ صحیح ذریعے سے پہنچائے ٹو دی اتھارٹیز. اور بھی باتیں کریں گے اس گیت کے بعد میں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئی لیگ 2026-27 سیزن شروع ہونے والا ہے بھائی, اگست ہے, اکتوبر سے شروع ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ پری سیزن میچز آنے والے ہیں, اس کے بارے میں جانکاری آپ کو ہم دیں گے تھوڑی دیر میں.

Yo. Big Radio Pub. Yeah. Hey, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM और रोबा के ज़रिए आप हमसे जुड़े हैं. थैंक यू आपके साथ के लिए. कई सारे कॉल्स हमें आज मिले हुए हैं, तो हाँ, थॉट प्रोवोकिंग कुछ हमने आपसे शेयर किया और आपने अपना थॉट शेयर किया, तो ऐसे और भी मज़ेदार बातें हम आपसे करते चलेंगे फॉर इन दिस प्रोग्राम. वैसे हमने कहा था कि आई लीग ये शुरू होने वाला है, इसके लिए कुछ प्री सीज़न मैचेस है एंड समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ हैपनिंग इन नेपिया फॉर द प्री सीज़न मैच. अगर आप नेपिया में हैं, इफ़ यू लव सोका, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी नाउ, कीप हमिंग एंड हमें बताएं नेपिया में आप एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्योंकि आई हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर द सोका लविंग फैंस ऑफ नेपिया. इसके अलावा क्राइस्टचर्च का जो यंगेस्ट बेस्ट शेफ अनाउंस हुआ है, वो कौन है और क्यों ये इतना खास है, इस पर हम एक नज़र डालेंगे. प्लस सम अपडेट्स अबाउट मैचेस हैपनिंग इन एनपीसी एंड एनआरएल. एनआरएल का वीक 26 है ऑफ राउंड रॉबिन मैचेस, वीक 27 नेक्स्ट वीक खेला जाएगा.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: ओके तो ए लीग सीजन शुरू हो जाएगा इन अक्टूबर, लेकिन उससे पहले कुछ प्री सीजन मैचेस भी शुरू होने वाले हैं. एंड नेपिया इज गोइंग टू होस्ट ऑकलैंड फुटबॉल क्लब्स प्री सीजन क्लैश अगेंस्ट वेस्टर्न सिडनी वॉन्डरर्स. कब हो रहा है भाई? ऑकलैंड एफसी विल प्रिपेयर फॉर द ए लीग मेंस टाइटल डिफेंस विद ए प्री सीजन गेम इन नेपिया इन सेप्टेम्बर. बहुत दूर नहीं है, कल परसों के बाद सितंबर भी शुरू हो जाएगा. द रेनिंग चैंपियंस विल फेस ऑफ वेस्टर्न सिडनी वॉन्डरर्स एट मैकलीन पार्क ऑन सितंबर 19th विद ए 3 PM किक ऑफ. ऑकलैंड चीफ एग्जीक्यूटिव निक बेका, इन्होंने कहा है कि द क्लब वॉज एक्साइटेड टू टेक द गेम टू हॉक्स बे एंड कनेक्ट विद फैंस अक्रॉस द रीजन. वी हैव अ लॉट ऑफ फैंस इन हॉक्स बे हु आर कीन टू सी अ विनिंग टीम बट कांट ऑलवेज मेक टू ऑकलैंड्स गो मीडिया स्टेडियम. The club confirmed the fixture after their 1-0 defeat to Asian champions Al Ahly in the FIFA International Cup in Saudi Arabia on Thursday. Auckland will also be out in the community. Auckland Football Club will be also out in the community before the game with fans given the chance to meet the players. So, Napier, taiyar ho jaye 19 September ko 3 PM, aap Auckland Football Club aur Western Sydney Wanderers ko khelte hue dekh sakenge at the McLean Park. Kicking off 3 PM, as I said, on September the 19th. Now, question time. Let's stay local और देखते हैं कि how much you have traveled. यहाँ पर आए हैं तो इस कंट्री को आपको डिस्कवर भी करना है. And you might have gone through a town जहाँ पर corrugated iron sheets से बना हुआ है कुछ animals. There's an iron sheep, corrugated iron sheep, a ram and a sheepdog. बिल्डिंग्स है, बहुत ही भारी भरकम. यू कांट मिस इफ़ यू गो अक्रॉस और ड्राइव थ्रू दिस टाउन. तो किस टाउन के बारे में हम बातें कर रहे हैं? विच टाउन हैज़ द आइकॉनिक कोरिगेटेड आयरन शिप, रैम एंड डॉग बिल्डिंग्स जो अभी हाल ही में बेचा भी गया है? 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब भेजें.

0: Radio Pub.
1: Hey, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. NPC के मैचेस भी आज खेले जा रहे हैं. If you are following, तो let me fill you in. फिलहाल तरनाकी और कैंटरबरी के बीच में खेल जारी है. फर्स्ट हाफ का खेल ये जारी है. बोथ टीम्स लॉक्ड एट 7 पॉइंट्स ईच. इसके बाद में 5 पर ओटागो और वैकातो खेलने वाले हैं. एंड देन लेटर टुनाइट मनवातु और नॉर्थ हाबा ये आमना सामना करने वाले हैं. तो इस पर भी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. प्लस NRL में कौन सी टीम क्या कर रही है. हमारी वॉरियर्स तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, क्योंकि with 38 points, they are at the second position and आज वो मैच खेलने, tomorrow ये मैच खेलने वाली है against the Knights at 4 PM. आज Titans और Rabbitohs आज 5 पर खेलने वाले हैं. Roosters और Dolphins 7:30 PM पर खेलने वाले हैं. Cowboys and West Tigers 9:35 PM पर. Tomorrow as I said, Warriors और Knights 4 PM. Eels and Sharks at 6:05 PM पर. वैसे at the top of the table are Panthers और top of the table के लिए भिड़ंत हो रहा है. Panthers, they won a match in this week's competition, so they've climbed back up to number 1. अगर आज Warriors जीत जाता है तो they will reclaim the top position, not आज, कल शाम को. सवाल हमने आपसे किया है about the town that has the animals, 3 animals that are made out of corrugated iron sheets, and these are just not monuments, they are actual buildings. और किस शहर में देखने को मिलेगा आपको एक corrugated iron वाला sheep, a ram and a sheepdog. किसी ने Taupo लिखा है. Well, it is not Taupo, लेकिन अगर आप Taupo की ओर जाते हैं from Auckland and if you choose a particular route, तो उस रास्ते में ये town पड़ता है. कौन से town के बारे में हम बातें कर रहे हैं, अपना जवाब हमारे पास भेजें.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई टिफिन खुल गया छे संजना का डिब्बा खुल गया
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
4: डिब्बा खुल गया
5: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Score big at Rebel with deals for dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
8: Kogan Mobile, true Aussie value.
7: Terms and conditions apply.
9: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
10: Kabhi bhi, kahin bhi.
11: Yo.
12: Radio Pub.
13: सत्रह मिनट रह चुके हैं तीन बजने में अगर आपने अभी ट्यून इन किया है आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं शहर के बारे में हमने आपसे पूछा है एंड इट इज़ तिराउ अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन विद ग्रेट लोकल बिजनेसेस ऐसा किसी ने हमारे पास लिखकर भेजा है आई ऑलमोस्ट ऑलवेज डू अ स्टॉपिंग इन तिराउ गोइंग टू बीपी जहाँ पर आई लव द पाइज एट वाइल्ड बीन कैफे दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बट इट इज़ अ क्विक way of getting good munch while you are traveling और अगर लंबी ड्राइव है तो वहाँ पर रुक कर थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ एंड देन आई कंटिन्यू माई जर्नी आप कहाँ पर स्टॉपिंग करना पसंद करते हैं लेट्स गेट इन टू दैट जब आप ट्रेवलिंग करते हैं वट इज़ दैट वन शॉप जो आप हमेशा जहाँ पर रुकते हैं और रुकना पसंद करते हैं क्योंकि देर समथिंग देयर दैट यू अडो और जस्ट लव मेरे लिए वाइल्ड बीन कैफ़े का जो बटर चिकन पाए है नाउ लास्ट ईयर से द पाए हैज़ चेंज्ड टेस्ट शायद शेफ़ या फिर इनका रेसिपी चेंज हुआ है लेकिन फ्रॉम द ईयर 2014 टिल 2024 आई वुड हैव सेड कि बटर चिकन पाए अगर आपको खाना है वाइल्ड बीन कैफ़े का खाओ अभी भी बुरा नहीं है लेकिन टेस्ट कुछ फ़र्क हुआ है तो What is that one shop या फिर one rest station जहाँ पर आप रुकते हैं when you are traveling long and what is that one thing that you buy from that one place? Let me know 5599 पर शायद आपको सुनकर उस particular shop को हम promote कर डालें you know unpaid promotion है तो क्यों ना देखें कि let's not gatekeep good things अगर आप जानते हैं कि एक किसी shop में कुछ अच्छा बिक रहा है Let everyone know, let everyone enjoy that particular thing. तो जुड़ जाए हमारे साथ में 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर 0800 004 866 पर आप कॉल भी करके हमें बता सकते हैं

Okay, so Father's Day, kab hai? Well, it is not tomorrow, so obviously it is on the second Sunday of September. So, ye confusion once and for all, aap dur kar de, kyunki Mother's Day or Father's Day? Mother's Day, first Sunday of May, Father's Day, second Sunday of September. That is it. Ye rule aapko follow karna hai, kyunki that is the rule. So, फादर्स डे जबकि अगले रविवार का है क्या, इसके लिए तैयारी आपने कर ली है. एंड बाय तैयारी हमने, हमारे साथ में दो कॉम्पिटिशन्स जारी है, फादर्स डे ऑन एयर एंड फादर्स डे सोशल मीडिया. नाउ इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव, इवन गूगल जेमिनी कैन बी वेरी हैंडी टू क्रिएट इमेजेस. आई हैव बीन यूजिंग क्वाइट ऑफन और इट इज़ सरप्राइजिंग कि ये क्या कर सकता है. If you know to give the right commands to your AI bot, ये आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया images create कर सकता है. And एक बहुत ही बढ़िया image आपका डेट का हमें चाहिए in the form of a superhero, क्योंकि आपको भाई उन्होंने दुनिया में लाने के लिए अच्छा योगदान दिया है और आपको पाल पोस कर बड़ा किया है. तो शायद आपके डेट से आप उतनी नहीं बनती है, तो as a superhero शायद आप उनको नेगेटिवली प्रोट्रे करना चाहते हैं. एंड जैसा भी आप चाहे, जिस तरह से अपने डेट को आप इमेजिन करते हैं इन अ सुपर हीरो एवटा, वो आपको क्रिएट करना है थ्रू AI. एंड वंस यू डू दैट, वो इमेज आप शेयर करें हमारे डेट्स AI अपग्रेड पोस्ट पर जो हमारे फेसबुक पर आपको मिलेगा, वहाँ पर शेयर करें एंड टैग योर डैड. एंड वंस यू डू दैट, मेक श्योर लेट ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स नो अबाउट दैट. उनको बोलो कि आकर उस फोटो को लाइक करें एंड हम फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. एवरी लाइक शुड बी अ फॉलोअर ऑफ आवर पेज और दे शुड लाइक द कॉम्पिटिशन पोस्ट एज वेल. इफ दे डू दैट, यू विल गो इनटू द ड्रॉ टू विन $300 कैश फॉर योर सेल्फ सो दैट यू कैन टेक योर डैड आउट ऑन अ ट्रीट ऑन फादर्स डे. 4th of September को ये ड्रॉ हम करने वाले हैं. द सेकेंड वन इज फादर्स डे ऑन AI एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम बातें करने वाले हैं. तो मेक श्योर आप अपने फ़ोन्स के करीब रहे, थोड़ी देर में आपको हम कॉल करने के लिए कहेंगे.

Alright, before we dive into this next song, आपके साथ कुछ बातें हैं ये हमें शेयर करनी है. And I was talking to you about the Father's Day competition. और इसके लिए अब आप हमारे पास कॉल करें क्योंकि हम बातें करने वाले हैं about bell bottoms. तो क्या आपको याद है? क्या you are going back into bell bottoms? And if you are, why so? क्योंकि एक गुजरा हुआ ज़माना ये दोबारा लौट कर आ रहा है. कैसे, कब? शायद यू हैव नोटिस्ड, शायद यू हैव नॉट. तो बेल बॉटम्स के बारे में आप क्या जानते हैं? 5599 पर मैसेज कीजिए या फिर 0800 004 866 पर आप कॉल कर सकते हैं.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: At Spot might save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
7: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
8: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
7: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
8: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
7: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
8: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
13: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
14: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
15: Mrs. Singh,
16: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
17: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
18: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश।
19: ऑलराइट, फादर्स डे कंपटीशन में ओनिया आपको हम शामिल होने का मौका दे रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि शेयर योर नॉलेज अबाउट हाउ कूल एंड हाउ लेटेस्ट यू आर। क्या आपको सभी मॉडर्न स्लैंग्स पता है? इससे हटकर क्या आपको आज का लेटेस्ट फैशन सेंस मालूम है? अगर है तो विल टॉक अबाउट समथिंग जो शायद कुछ दौर के बाद वापस आया है। क्या है वो चीज़? आप हमें कॉल करें एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट, एंड देन कुछ स्लैंग्स के बारे में हम आपसे पूछेंगे एंड जानेंगे कि क्या आपको डू यू नो हाउ टू टॉक टू योर किड्स। जो जेंजीज है इनसे बात आप कर लेंगे, अगर फुल टू जेंजी ट्रूप अगर बातें कर रही हैं, क्या आप इसमें हिल मिल सकते हैं? अगर सकते हैं तो भाई हमारे पास कॉल करें ऑन 0800-004-866। अगर बच्चे हैं तो बच्चों अपने पापा को बोलो कि हमारे पास कॉल करें। भाई पुट हिम ऑन द स्पॉट एंड लेट्स हैव अ फ्यू चिट चैट की देखते हैं कि स्लैंग्स जानकर ये आपकी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। फ्राइडे 4 सितंबर को एक लकी डेट को हम $500 कैश देने वाले हैं। सो इट इज़ अप टू ऑल द डेड्स एक्चुअली टू पुल योर सॉक्स अप एंड कॉल मी, जो भी हमें सुन रहे हैं, और बातें करेंगे। शायद I might just make you $500 richer by putting you into this draw. 4 September ko ye draw hone wala hai.

बिग थैंक यू टू अरुण कॉल करने के लिए. एंड सवाल हमने आपसे जो किए हैं, कुछ आपको मालूम थे कुछ नहीं, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर की. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने मुझे बताई कि आप जिस एज पर है, यू हैव एन 18 ईयर ओल्ड सन एंड यू हैव योर डैड एज वेल. आपकी आपके डैड से नहीं बनती है, आपके बेटे की आपसे नहीं बनती है, एंड एट द सेम टाइम आपके डैड और आपके बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा बनती है. तो यू डोंट नो हाउ दैट हैपन, लेकिन ये अभी आपका लाइफ सिनेरियो है. वेल जो भी है, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ऑसम खट्टा मीठा रिलेशनशिप. हम जानते हैं कि एज डिफरेंस के कारण बच्चे समझते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते. पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, बच्चे ये सही नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं. वेल अलग अलग नज़रिया है. ज़रूरी ये है कि यू कीप ईच अदर सेफ, एक दूसरे को ये बता कर रखे कि एक दूसरे के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और एक दूसरे को इतना भी बताए कि हाउ मच यू लव एंड अडोर देम. जितना हो सके समय निकाले एक दूसरे के लिए, क्योंकि यही वक्त मायने रखता है जब सभी वक्त गुजर जाते हैं. तो आप सभी को हम शामिल करेंगे थोड़ी देर में इन एन ऑसम फादर्स डे सॉन्ग. तो जुड़े रहे हमारे साथ में. अपने डेट के लिए अपने मैसेजेस हमारे पास भेजते रहे 5599 पर. थोड़ी देर में एन ऑसम ब्यूटीफुल फादर्स डे सॉन्ग आपके लिए हम शामिल करना चाहते हैं.

0: Radio Pub.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan the.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Craving ho rahi hai us thick aur क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: Say goodbye to winter.
7: Goodbye.
6: And hello to spring.
7: Hello.
6: This weekend at Risco's with new season savings store wide and half price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
7: Goodbye.
6: Hello spring.
7: Hello.
6: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
8: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
9: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
10: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
9: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
10: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
9: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
11: Get it sorted with cheap as deals. Add some colour to the garden with 10 centimetre elite cyclamens, now only $4 each. And get a sweet deal on 10 centimetre Zealandia strawberry plants, now just $3.50 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
12: Smart Pay
13: is now.
12: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local service.
14: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
12: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local service.
0: Yo. Radio Pub. You're listening to Chikash.
15: हम पर रेडियो पब का कार्यक्रम जारी है. मैं हूं जिकाश एंड लेट मी फिल यू इन ऑन नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप मैच जो हो रहा है. वीक 5 में ये चैंपियनशिप पहुंच चुका है एंड तारानाकी और कैंटरबरी के मध्य में ये खेल फिलहाल जारी है, जिसमें तारानाकी की जीत कैंटरबरी से 35 पॉइंट्स टू 14 से हो रही है. नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू एवरीवन जो अपने डैडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ है चाहे नहीं है. जो भी है, आप उनकी यादों को सजो कर रखे हैं, उनकी टीचिंग्स को आप अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं. तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी फादर्स डे फॉर द कमिंग संडे, नॉट टुमारो पर द 6th ऑफ सितंबर.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इंडिया।

चार बजकर दो मिनट हुआ है, रेडियो पब का सिलसिला जारी है। मैं हूं जिकाश। इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन हम 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा। इस घंटे में हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है आउट एंड अबाउट, जो इवेंट्स में आप हिस्सा ले रहे हैं। देयर इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग राइट हियर इन ऑकलैंड। टाइटेनिक के बारे में हमने लास्ट वीक बातें की थी, कब कहाँ कैसे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे राइट ऑन दिस आवर।

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई branch नहीं है.
2: All right, out and about. The major one that I'll talk to you about is the Titanic Expo. It has docked here in New Zealand. और इसके लिए tickets आपको लेने हैं. Titanic school visits, educational and senior groups के लिए या फिर large groups या फिर private और corporate events के लिए भी आप tickets booking कर सकते हैं. Titanic, the human story, Auckland. ये ऑकलैंड आ चुका है एंड इट हैज़ हैड डन सोल्ड आउट रन्स इन पर्थ, ब्रिस्बन इन इट्स ट्विन एग्जीबिशन, प्लस लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्टिन और डीसी में भी इन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया है. काफ़ी लोगों को एजुकेट किया है अबाउट द फेटफुल डे ऑफ द इन द ईयर 1912. So you can embark on an audio guided experience describing the events about the famous ship. Unravel the true story of the ship through personal belongings, photographs and other relics from the passengers and the ship. Your audio guide included with each ticket narrates the stories and testimonies of passengers and survivors from the Titanic. Kafi log Titanic ke bare mein jante hain from the movie Titanic, jisme Leonardo DiCaprio aur Kate Winslet lead roles mein nazar aaye the. Now, question for you. Aapko हमें बताना है दी ऑन स्क्रीन नेम्स फॉर केट विंसलेट एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो. हैव यू वॉच्ड टाइटैनिक? अगर नहीं तो हैव यू वॉच्ड मीम्स अबाउट टाइटैनिक, क्योंकि इस इन मीम्स में भी इन दोनों का नाम आपको मिलेगा. तो केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो, ऑसम एक्टर्स ऑफ हॉलीवुड, इनका स्क्रीन नेम क्या था इन द मूवी टाइटैनिक?

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह।
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मीन्स मेरे घर का किचन।

हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। कार्यक्रम में हमने आपसे सवाल किया है अबाउट टाइटैनिक, जिसका एक एग्जीबिशन ये शुरू होने वाला है फ्रॉम द 1st of September, और इसके लिए टिकट्स बिक रहे हैं। दी लोएस्ट अमाउंट दैट यू गोना पे इज $40, और इसमें ये पूरा एग्जीबिशन आप एंजॉय कर सकते हैं। ग्रुप डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, तो गो एंड चेक आउट the titanicexhibition.com वेबसाइट, और यहाँ पर आप रिजर्व कर सकते हैं अपना टाइम्स और अपना टिकट्स जो भी आपको सूट करे। यू कैन चेक योर अवेलेबल डेट्स एज वेल। अभी तो काफ़ी डेट्स अवेलेबल है, लेकिन टिकट्स बहुत ही ज़ोरों से बिक रहे हैं। फॉर अ मंथ यू कैन एन्जॉय दिस एग्जीबिशन हियर इन ऑकलैंड। इसके अलावा सवाल हमने आपसे किया है बेस्ड ऑन टाइटैनिक, कि टाइटैनिक जो मूवी आई थी इसमें केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को हमने देखा था। नाउ व्हाट वर देयर स्क्रीन नेम्स, ये आपको हमें बताना है। 5599 पर किसी ने जेम्स एंड एंड्रिया लिखा है। आई डोंट नो व्हाट टाइटैनिक मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स डेफिनेटली नॉट जेम्स एंड एंड्रिया। सनी न्यूक से निष्ठा है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नोट शो में है बरखा, थैंक यू, आपका भी जवाब हमें मिल चुका है। आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: हमारे थिएटर्स में कभी कभी मूवीज़ आ जाती है जिसको रेटिंग नहीं मिली होती है, मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन कि वो किस एज के लिए अप्रोप्रियट है, कौन से एज के लिए इनअप्रोप्रियट है, ये बात टीबीसी होती है। जैसे कि अभी काफ़ी मूवीज़ है जिसको बताया जाता है कि टीबीसी, तो क्या ये बच्चों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए ये कैसे डिसाइड होगा कि यू नो व्हाट एज ऑफ किड्स इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसी मूवीज़ आती है पहले अडल्ट्स जाकर देख ले, एंड इफ इट्स यू थिंक यू बी द जज कि आपके बच्चों को देखना चाहिए या नहीं, देन यू डिसाइड कि ये मूवी वो देख सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक या दैट्स द बेटर वे टू गो। वेल एनीवेज, व्हाट्स द लेटेस्ट विद आवर पॉडकास्ट टीम? वेल 100 ईयर्स ऑफ रेजिलियंस, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी। हर एक कम्युनिटी, हर एक कल्चर, हर एक अलग किस्म का बंदा जो न्यूजीलैंड आया है, they have shaped New Zealand to what it is right now. And अगर 100 सालों से एक रिश्ता जुड़ा है तो 100 साल तक कैसा इम्पेक्ट होगा एक कम्युनिटी का दूसरा कम्युनिटी पर? How did the Punjabi community help shape the fabric of modern New Zealand over the last century? Well, I have been part of New Zealand for the last decade, not century, लेकिन 100 साल से कैसे शेप किया है हमारे पंजाबी भाई बहनों ने इस ऑसम कंट्री को। ये एक नया एपिसोड अनफिल्टर्ड का आया हुआ है जिसमें हरजोत सिंह प्रेजेंटर एंड रिसर्चर है, एंड गगन संधू हु इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द ऑसम डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू आओतेरोआ। इनके साथ में बातें की है सैंडी एंड रूजबे ने, एंड दे हैव शेयर्ड देयर अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ करेज, सेक्रीफाइस एंड बिलोंगिंग फ्रॉम जनरेशंस ऑफ पंजाबीज हु कैरीड देयर ड्रीम्स अक्रॉस ओशंस एंड रिबिल्ड देयर लाइव्स इन एनजेड फ्रॉम ग्राउंड अप। तो द 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पायनियर्स हु पेव्ड द वे, the research, the passion behind bringing these untold personal stories to screen, and why embracing your new home's culture while honoring your roots creates true belonging. इस documentary के बारे में और behind the scenes के बारे में बातें हुई हैं। Documentary is Punjab to Aotearoa. इसके बारे में जानने के लिए before you watch this, I think you should listen to the podcast. और podcast के लिए सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे ऑन रोवा या स्पॉटिफाई या जहाँ की वेबसाइट भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं, या फिर ड्राइव लिखकर भेजे 5599 पर।

Yo. Radio Pub. Hey, hey. Welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. Alright, let's go to Fiji, जहाँ पर Fiji Football Association के अंडर जो लीग मैचेस हो रहे थे एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के अंतर्गत खेल हो रहे हैं. एंड अभी बा और रेवा फुटबॉल क्लब के बीच में जो खेल हो रहा था ये हाफ टाइम के बाद अभी 1-0 पर अटका हुआ है. तो इस पर जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन तावा एंड सेंगांगा, अभी बीते हफ्ता ही किसी बंदे ने मुझे कहा कि तावा छोटी सी जगह है, वहाँ के बारे में क्या ही बातें करना. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तावा कॉलेज ने जीत लिया अंडर 19 सोका डिवीज़न का खिताब फ्रॉम इन लंबासा कॉलेज को हराकर, और फिर तावा ओपन गर्ल्स कैटेगरी में भी जीत गया है. एंड टुडे सेंगांगा तावा को 1-0 से हरा रही थी, लेकिन तावा हेल्ड सेंगांगा इन अ प्ले ऑफ इन द फर्स्ट लेग फॉर द सुपर प्रीमियर्स. तावा फुटबॉल क्लब फॉट बैक टू होल्ड सेंगांगा टू ए 1-1 ड्रॉ इन द फर्स्ट लेग ऑफ द एक्स्ट्रा सीनियर लीग playoff at Bodalevu School Ground in Lambasa today. The host went into the break with a 1-0 lead, but Tawa responded in the second half to find the equalizer and keep the promotion battle wide open. So, jo bhi ab next leg mein jeetega Tawa aur Sengaga ke beech mein, that team will qualify or will be going up to the premiers, aur phir udhar प्रीमियर लेवल से जो टीम बाहर निकलेगी वो आ जाएगी इन द सीनियर डिवीज़न. तो किसको आप सपोर्ट करते हैं, सेंगांगा या फिर तावा फुटबॉल क्लब? डू लेट मी नो. वैसे जो सवाल हमने किया था वो टाइटैनिक में केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो थे, इनका स्क्रीन नेम्स था रोज एंड जैक.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: एनपीसी नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप के अंतर्गत जो खेल हो रहा था बिटवीन बिटवीन तरनाकी एंड कैंटरबरी, मैं अगले सप्ते में पहुंच गया था तरनाकी और कैंटरबरी के बीच में, ये ख़त्म हो चुका है एंड तरनाकी हैव पुल दिस वन इन 40-26 से इनकी जीत हुई है। ओटागो और वेकाटो के बीच में अभी खेल जारी है, 12 मिनट्स इनटू द प्ले, 7-7 पॉइंट्स से दोनों टीम अभी बराबर पर है। इसके बाद में मनावातु और नॉर्थ हाबा आज 7:10 PM पर खेलने वाली है। वंस अगेन NRL का जो 26th वीक है, ये वीक का खेल, वीकेंड का खेल खेला जा रहा है एंड नेक्स्ट वीकेंड विल बी वीक 27 of 27, जिसके बाद में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी वो टॉप टीम्स है दैट आर मेकिंग इनटू द फाइनल प्लेऑफ्स। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वॉरियर्स हैव हैड अ ग्रेट रन दिस ईयर एंड वी शुड बी ईजिली गोइंग इनटू द फाइनल्स। आपको क्या लगता है? जो भी हो, शामिल कर लेते हैं इधर सचिदा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आप आलू बैगन मटर करी और पूड़ी बना रहे हैं विथ टोमेटो एंड धनिया चटनी। वाओ, हाँ तो शुरू हो गया है कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये सभी चीज़ें अब बनने वाली है राइट थ्रू टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो जितने भी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, जन्माष्टमी में आज पहले ही रात जाने वाले हैं, आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे हम कह रहे हैं। किसी ने कहा है कि ब्रो कैन यू प्ले गोविंदा सॉन्ग बरसात का मौसम एज इट्स रेनिंग होल डे टुडे। कुछ करेंगे भाई।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
4: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स Starring rocking star Yash, Mayim Bala, Kiara Advani, Tara Subaria, and Huma Qureshi.
5: Hello, Daddy.
4: Toxic, now showing in cinemas.
6: It's time. I'm coming!
4: Distribution partner, Forum Films, rating TBC.
7: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
8: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
7: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
8: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
7: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: MediaWorks Complaints. How can I help?
11: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
10: Nice.
11: And you talked me into creating this funny character.
10: Great.
11: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
10: Are you?
11: Yes.
10: Are you Bobby the Baker?
11: Yes.
10: What's that thing you do again?
11: Stop it.
10: You bring the mouse.
11: Stop it.
10: I'll bring the pie.
11: Stop it, please.
10: Okay.
11: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
10: So what's the problem?
11: My name's Bruce.
12: Advertise with MediaWorks.
10: New Zealand listens to us.
13: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
14: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग
15: रेडियो पब
16: Nope, that was the bet for Sunday Night Melodies, जो कल होने वाला है तो कल शाम को भी मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगा Sunday Night Melodies में दिल से कार्यक्रम आपके लिए लेकर आने वाला हूं तो कीप हमिंग और अभी तो कुछ समय बाकी है बिफोर आई शूट ऑफ लेकिन जाने से पहले ये एक बारिश वाला गीत आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं एश किंग की आवाज़ में तो इसे भी आप इंजॉय करते रहिए एंड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जिसके बारे में हम बातें करेंगे कल भी अंडर द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर टुडे वाज टुडे इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट टुमारो इज़ द इंटरनेशनल डे of the victims of enforced disappearances. ये क्या है क्यों है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ये बातें हम करेंगे टुमारो फ्रॉम 6 till 12. फिलहाल आइए एश किंग की आवाज़ को हम एंजॉय करते हैं वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट की ओर अगर हम देखें तो फिलहाल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट 2 of 3 ये स्टंप्स पर पहुंच चुका है एंड ऑफ डे 2 में इंग्लैंड 290 Pakistan at 110. England leads by 261 runs.

0: ऑलराइट, मेरा तय से निकलने का समय हो चुका है। देयर इज अ लॉट प्लान फॉर टुनाइट। अभी घर जाऊंगा और फिर तैयारी शुरू हो जाएगी फॉर टुमारो मॉर्निंग्स क्लैश ऑल ब्लैक्स और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच होगा। 3:10 पर किक ऑफ शुरू हो जाएगा, उससे पहले बिल्डअप होंगे। तो डू प्लान योर इवनिंग प्रॉपरली अगर आप कहीं जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज से कई जगहों पर शुरू हो रहा है। बारिश का समय है तो हो सके आप समय से पहले घर से निकल जाए। अभी से आप तैयारियां शुरू कर दें ताकि 7:30 से पहले आप वेन्यू पर पहुंच जाए और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रश के आप आराम से सफ़र एंजॉय करते हुए पूजा पाठ के लिए पहुंच जाए और फिर वहां से दोबारा घर को आप आ जाए, क्योंकि ये फंक्शन तो चलता रहेगा टिल द 4th of September, अगले शुक्रवार तक। तो हम चाहते हैं कि होल वीक आप एंजॉय करें एंड एक्सपीरियंस डिविनिटी वेयर एवर यू आर इंडल्जिंग इन विथ अदर्स फॉर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। जितने भी मंडलीज हैं आप सभी को जय श्री कृष्णा हम कह रहे हैं। यही आशा कर रहे हैं कि आपकी जो पूजा है, आपका जो सेलिब्रेशन है, ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ में जुड़े ताकि द वर्ड ऑफ गॉड ये आप तमाम लोगों तक पहुंचा सके। अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं या फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स में जा रहे हैं, मेक श्योर यू आर देयर ऑन टाइम। और ऑन टाइम पहुंचने के लिए बिफोर टाइम घर से निकलना पड़ता है ताकि आप अगेन एंजॉय द जर्नी एंड देन बी एट योर डेस्टिनेशन एट द रिक्वायर्ड टाइम। जो भी हो, बी सेफ आउट देयर। चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर शराब नवाजी कर रहे हैं तो हद में होकर और सॉर्ट आउट योर सोबर ड्राइवर्स। हम नहीं चाहते हैं किसी चोट चपेट दुर्घटना में आप आ जाए। इन्हीं बातों के साथ में छोड़े जा रहे हैं आपको विद दीज अ फ्यू ऑसम ऑसम ट्रैक्स फॉर यू टू एंजॉय टिल आई कम बैक हियर टुमारो एट 6 PM। मिलते हैं कल शाम 6 पर। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट एंड ऑन एन ऑसम संडे। क्योरा
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

0: ัสดีค่ะ
1: Bangkok में होगा हमारा असली तशन
2: टुकटुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
4: हेलो एवरीबॉडी
5: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
5: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे ओनली ऑन हम
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: Say goodbye to winter.
9: Goodbye.
8: And hello to spring.
9: Hello.
8: This weekend at Briscoe's with new season savings store wide and half price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
9: Goodbye.
8: Hello spring.
9: Hello.
8: With fresh savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक national campaign जो mental health पर खुलकर बात करने पर encourage करता है. Call Asian Family Services Helpline at 0800-862-342 या visit करें asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
11: You filled the pinata before I sealed it, right?
12: No, you did.
11: Oh, I thought you did.
12: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
13: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
14: हाँ. अच्छा
13: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
14: मिसेस सिंह
15: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
16: Mike here from Novus Glass. Do your wipers smear rather than clear your windscreen? Then you need Novus wipers. Novus all-in-one wiper kits are available online now. These are the best wipers you will ever buy and are quick and easy to install. So for less of this and more of this, as soon as you notice it, Novus it. Visit novus.co.nz or drop into your local branch.
17: Ah! Novus.

0: The DJ Mix. DJ, turn
1: it up. रैम्बो सुने हम तुम्हारा।
2: अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
3: Winger Motors are your home of Cherry, जहां नई एस

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Budget Gandhi.
9: Night Fly.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग, स्प्रिंटिंग, pitching, kicking, sin binning, and you need to know about it.
3: Join our tribe!
2: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
3: join our tribe!
4: Playing Bollywood's biggest hits.

0: जब से मेरे
1: The beat of Bollywood.
2: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: मुझे हिट गाने।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. Playing

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। Father's Day bus aane hi wala hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
1: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

फिरूं, अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरूं। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

आप सुन रहे हैं हम्पलिंग बॉलीवुड स्पीकर से, मैं हूं आरज़ आपके साथ. एंड नेक्स्ट अप, आई विल बी शेयरिंग यू हाउ यू कुड विन $300 कैश टू स्पेंड ऑन योर फादर्स डे गिफ्ट्स.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: A Kogan fan is just like a fan. Both fans do very similar fan things, but with slightly different little logos, shapes, and chords. One fan's a Kogan Smarter Home Heating and Cooling Bladeless Purifier fan. The other fan has a price you will not be a fan of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
3: Get it sorted with Cheap As Deals. Give your garden a low maintenance glow up with 10 centimetre ornamental grasses, now $4 each. And brighten up your home with Clio 18 centimetre indoor plant pots, now $15 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today. Flooring.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकर से समय हो आरज़ू आपके साथ. फादर्स डे इज कमिंग संडे एंड वी वुड लव टू गिव अवे $300 कैश सो यू कैन बाय समथिंग स्पेशल फॉर योर डैड फॉर सम यू नो फॉर द फादर्स डे. और ये कॉम्पिटिशन के लिए हाउ डू यू एंटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो बनानी है अपनी पापा की, और उसके बाद हमारी फेसबुक पेज में एक कॉम्पिटिशन पोस्ट है जहाँ पर आपको वो फोटो को कॉमेंट में अपलोड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप अपनी डैड को भी टैग कीजिए. और टैग करके बाद आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक द पोस्ट. आप हमारी पोस्ट एज वेल एज आपकी पिक्चर की पोस्ट, एंड ऑल्सो दे हैव टू बी फॉलोइंग हमारी हम फेसबुक पेज. सो थ्री रिक्वायरमेंट्स. सो या लाइक आपकी फोटो, लाइक द कॉम्पोजिशन पोस्ट, एंड ऑल्सो फॉलो आर हम की फेसबुक पेज. एंड सो द एंट्रीज हु हैव मेट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स विल बी इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश. ईजी मनी. एंड विनर विल बी ड्रॉन आउट इस फ्राइडे को 4th of September में. We are controlling transmission.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ू आपके साथ. ओह माय गॉड, सनम पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाइस, आई गेस वन ऑफ द टैलेंटेड सिंगर्स. आई रिमेंबर एक टाइम था जहाँ पे आई शुड जस्ट ओनली लिसन टू सनम पुरी की सॉन्ग्स लाइक गुलाबी आँखें, सेरी रातें, ये मौसम. लाइक यूट्यूब में आई शुड लाइक जस्ट प्ले सनम की सॉन्ग्स ऑन रिपीट. एंड आई रिमेंबर उन दिनों में देर वॉज नो यूट्यूब एड्स टू, सो इट वॉज लाइक यू नो आई कुड जस्ट कॉन्स्टेंटली लिसन एंड लाइक आई सिल रिमेंबर द म्यूजिक वीडियोज एंड स्टफ. हु वॉज इफ यू गाइज वर ऑल्सो बिग फैन ऑफ सनम पुरी, लेट मी नो 5599 पर एंड मे बी आई कुड चेक इन अनदर सनम पुरी आइकॉनिक सॉन्ग एट 7 o'clock.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: जबरदस्त हिट्स
6: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
0: हम
7: आप सुन रहे हैं Playing Bollywood's biggest hits. मैं हूँ आरज़ाव के साथ. And कुछ मिनट्स पहले, 15 मिनट पहले, I asked if you guys were also a big fan of Sanam Puri, because I was definitely one of the biggest fan of Sanam Puri. And कुछ messages भी आए थे and some song requests. But unfortunately, the song that got requested the most was ये रात ये मौसम, but unfortunately हमारी सिस्टम में नहीं है and I don't know how to download or get the songs obviously officially. So the second highest I guess song that got voted next was Pal Pal Dil Ke Paas. So I hope aap enjoy kare is song ko, kyunki this song is still as beautiful. So enjoy.

0: biggest hits.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
7: हेलो डैडी
6: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
8: इट्स टाइम आई एम कमिंग
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी

0: Sunday breakfast.
1: आप सुनने वाले हम और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड नेक्स्ट अप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी बॉलीवुड फिल्म्स न्यूजीलैंड के थिएटर्स में रिलीज होने वाला है. न्यूज़ दैट आई लव टू शेयर.

आप सुन रहे हम्बलिंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हुआ है आपके साथ एंड इफ यू नो आपकी डैड को सब पता है अभी की नई स्लैंग्स या फिर पॉप कल्चर देन आवर टीम इज गोना बी पुटिंग हिम ऑन द टेस्ट क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग लाइक स्किबिडी क्या मतलब क्या है या फिर ये जेंजीज की स्लैंग्स वगैरह वगैरह लाइक वी गोना बी आस्किंग यू ऑल एंड फॉर दैट how he can enter is dad will call on 800-04-866 and if he answers the question correctly his name goes into the draw and Friday September 4th ko ek lucky dad will be drawn to win a $500 cash so yeah so get your dad listening and then get him to call through when there's the queue to call and he could be $500 richer this Father's Day

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
3: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
4: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
3: ये है अम्मास कबाब्स promise, delivering happiness bite by bite. अम्मास food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
4: 100% authentic and pure as mother's love.
5: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
6: Say goodbye to winter.
7: Goodbye.
6: And hello to spring.
7: Hello.
6: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
7: Goodbye.
6: Hello spring.
7: Hello.
6: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
8: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
9: Goa ki galiyon mein ek naya bachcha janam le raha hai. Toxic, a fairy tale for grown-ups. Starring rocking star Yash, Mayim Pala, Kiara Advani, Tara Suparia and Huma Qureshi.
10: Hello, Daddy.
9: Toxic. Now showing in cinemas.
11: It's time. I'm coming!
9: Distribution partner, Forum Films, rating TBC.
1: Chill, sip, smile.
12: This is Sunday Breakfast.
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग पॉलिटिक्स के साथ, समय हुआ आप के साथ. एंड आज एक्चुअली एक नेपाली कॉन्सर्ट हो रहा है. He is one of my favorite Nepali singers, Sushant Kesi, and they actually had a meeting apparently where they were kind of contemplating if we should go ahead after all the disheartening stuff, you know, after the tragic tragedy that has occurred a few days back with the flooding. And they have now come to the conclusion that they are going to go ahead. And वो पैसा जो कलेक्ट करेंगे वो रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे, अ पोर्शन ऑफ इट. सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर दैट फॉर अस एज़ वेल एज नेपाली कमिंग टुगेदर एंड आई एम श्योर सुशांत इज़ गोना बी डूइंग अ ट्रिब्यूट एज़ वेल टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, टू द पीपल हु आर स्टिल मिसिंग एंड येट टू बी फाउंड. जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट दे विल बी फाउंड समवेयर सेफ ASAP. Yeah, and all the families reunite and that it never happens again. But yeah, so if you're going to the concerts, it's gonna happen today obviously, but if you are familiar with there's still tickets available. It's on Ticketek if you want to go. And if you are on Nepali, if you enjoy Nepali music or Sushant Kesi's music, yeah. But I'm just glad that they are going to be, you know, donating a portion to the relief fund.

आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ. एंड यू नो सैयारा जब रिलीज हुआ था लास्ट ईयर आई वॉज अ बिग फैन ऑफ द डेब्यूटेंट्स आहान पांडे और अनीत पड्डा. बोथ ऑफ देम ऑनेस्टली इनक्रेडिबल एक्टर्स एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एवर. एंड या सो रिसेंटली इनकी इंस्टाग्राम में पोस्ट आया था दोनों का. And I want to tell you guys why I think these two are still dating. Ki first mein lagta raha tha ki ye dono kuch to hai aapas mein. It was not just the marketing. Like the chemistry is like beyond the screen. And I'll tell you more about why I think these two are dating. Okay? I'll tell you guys up next.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
12: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
13: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
14: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
15: That is a very acceleration.
14: Yeah.
15: Amazing acceleration.
14: This
15: record,
14: is my fancy
15: say.
14: English. That's a very.
15: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: Weekdays, 6 to 10 a.m. The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक सच समय हो आरज़ू आपके साथ एंड इफ यू आर समवन हु यू नो पील्स पोटैटोज़ ऑन अ डेली घर में आलू की सब्जी होता है आई एम लेजी एंड दिस वोंट वर्क फॉर मी बट इफ यू आर समवन हु यू थिंक इज़ वेरी फास्ट एट इट देन यू माइट बी एबल टू विन एंड होल्ड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सो बेसिकली द रिकॉर्ड इज़ फॉर द मोस्ट पोटैटोज पील्ड इन वन मिनट अभी तक एक भी नई ऑफिशियल होल्डर नहीं है सो यू कुड एक्चुअली बी द फर्स्ट वन ऑल यू नीड इज़ अ स्टॉप वॉच अ स्टैंडर्ड किचन नाइफ या फिर एक पोटैटो पीलर एंड सम रॉ पोटैटोज एंड देन यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट टू यू नो पील ऑफ पोटैटोज लाइक बेसिकली 60 seconds में आप कितने पोटैटोज पील करोगे And who knows, you might be walking away with a certificate saying you've broken the world record or, you know, set the benchmark basically. So yeah, easy. Koi bhi nahi hai abhi tak holder. So maybe aaj aap ki koi plans nahi hai, then maybe you want to try out today. Let me know down far down line, but how many potatoes you peeled.

0: meter.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स इट्स समय हूँ अर्जव के साथ एंड आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन जब आप गाड़ी में हो एंड यू हियर दिस इंट्रो ऑफ अ ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग एंड आपकी यू नो लाइक यू हैवन हर्ड द सॉन्ग इन एजेस एंड यू लाइक ओ माई गॉड आपको फील्स में यू नो लेके जाता है लाइक इट्स लाइक योर दिन बनाता है वॉट इज दैट वन सॉन्ग लेट मी नो 5599 पर एंड आई कुड बी प्लेइंग दैट सॉन्ग फॉर यू हियर ऑन हम फॉर मी every time I hear Pehli Nazar Mein and the starting starts, oh my god, I'm like, yes! One of my favorite songs ever.

आप सुन रहे हम प्लेइंग पॉलिटिक्स पे किसे समय हमारे साथ के साथ एंड इफ यू लव टू लिसन टू सम ऑफ द पॉडकास्ट फ्रॉम आर सैंडी और रिज़्बिकी शो मेक श्योर टू टेक्स्ट थ्रू ड्राइव टू 5599 एंड आई सेंड यू द लिंक एंड दे विल बी बैक टुमारो एट 4 p.m.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
6: Oh hey! If you haven't received your enrollment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
7: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: Chill, sip, smile.
11: This is Sunday Breakfast.
10: Sunday Mood Meter on Hum.
12: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स, इस समय हूँ आरजव के साथ एंड नेक्स्ट अप आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल द बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाला है न्यूजीलैंड थिएटर्स में।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड के बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजे आपके साथ. एंड बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाला है हमारी लोकल थिएटर्स में, इवेंट सिनेमाज या फिर हॉइट्स या फिर इंडिपेंडेंट थिएटर्स, वी गॉट टॉक्सिक जो रिसेंटली रिलीज हो चुका है. ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है और सेप्टेम्बर 4th में वी हैव मिर्ज़ापुर द मूवी जो कि है बेस्ड ऑफ द पॉपुलर वेब सीरीज मिर्ज़ापुर. और सेप्टेम्बर 18th में वी हैव 3 फिल्म्स एक्चुअली रिलीजिंग. एक है लव लॉटरी जो कि है एक रोमांटिक सस्पेंस फिल्म. सेप्टेम्बर 18th में वी हैव भारत देश है मेरा सोशल पॉलिटिकल ड्रामा. एंड देन सेप्टेम्बर 18th में वी हैव तायरा क्राइम मिस्टरी ड्रामा.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: is Sunday Breakfast.
1: Zaika, jo feel ho. Tickle your taste buds.
2: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हूँ आज आपके साथ एंड न्यूजीलैंड में आके आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव ट्राइड पाई. पाइज आर लाइक अ स्टेपल यहाँ की. हमारी रोटी इज इनकी पाइज. आई गेस दैट्स इज दैट अ गुड कंपैरिजन. आई डोंट नो बट आई नो हाउ मच कीवीज लव देयर पाइज एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली. सो लेट मी नो आपकी फेवरेट पाई की स्पॉट क्या है, कहाँ पे है. 5599 पर एंड आई विल बी रिवीलिंग टू यू द विनर ऑफ न्यूजीलैंड की बेस्ट पाई.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट, मैं हूँ आरज़ू आपके साथ। इस महीने स्टार्टिंग में दे हैड अ न्यूजीलैंड बेस्ट बाय अवार्ड। यप, देयर इज अ होल पैनल जज एंड स्टफ दैट कम टुगेदर एंड डिसाइड कि या इस प्लेस की इस बाय बेस्ट है और व्हाटएवर। सो ओवरऑल विनर नंबर वन बेस्ट बाय 2016

आप सुन रहे हम्पलिंग बॉलीवुड स्पीकर्स, तो मैं हूँ आरज़ू आपके साथ, एंड वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सम फिल्म्स जो 20 इयर्स ओल्ड हो चुका है इस साल. सो दीज अमेजिंग इनक्रेडिबल फिल्म्स वर रिलीज इन 2006, एंड आई वुड लव टू नो आपकी ये लिस्ट में आपकी सबसे फेवरेट फिल्म क्या था, एंड आई विल ऑल्सो शेयर यू माई फेवरेट वन. So starting off from, we've got movies starting from Dhoom 2, Rang De Basanti, Krish, Dawn, Phir Hera Feri, Golmaal Fun Unlimited, Lage Raho Munna Bhai, Viva. Oh my god, Viva was in 2006? Wow. Kabhi Alvida Na Kehna, Fanna, Omkara, and Gangster. So these incredible films were all released in 2006, jo ki 20 saal pehle, and they've all turned 20. I know, sorry, I'm not trying to make anyone feel old, but to be honest, mujhe bhi, I feel very old knowing that these movies have already turned 20 years old. Kyunki I still remember meri grandparents ke house mein I watched Dhoom 2 on their TV, and I was a big fan of Hrithik Roshan since day one. Maine meri first Bollywood movie jo maine dekhi thi bachpan mein wo hai Kabhi Khushi Kabhi Gham, at least I remember that clearly. And yeah, Dhoom 2 that's so crazy ki 20 saal pehle tha, but I think I'm going to choose Dhoom 2. आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? कुड बी अ स्पेशल मोमेंट, या फिर आई डोंट नो योर फेवरेट मूवी. लेट मी नो 5599 पर.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
4: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
3: Well,
4: within my budget?
3: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
4: Price?
3: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
4: Zelo. I like the sound of that.
3: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
7: Brewing good vibes, Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
9: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स, मैं हूं आरजू आपके साथ। एंड इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू मी, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम नेपाल, सो दैट्स वेयर आई वाज बोर्न। आई ग्रो अप इन नेपाल हाफ एंड उसके बाद इंडिया में आई वेंट टू दार्जिलिंग, टू बी स्पेसिफिक कालिम्पोंग में बोर्डिंग स्कूल में। एंड बेसिकली बिफोर आई वेंट टू माई बोर्डिंग स्कूल इंडिया में क्लास 7 में, I already knew the national anthem of India by heart. And there was one particular movie, Bollywood movie of course, jisne mujhe ye national anthem sikhaya tha without even knowing. Can you guess the film? Let me know, 555-99 and I'll reveal it next.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड जी हाँ, आई सी ऑल दीज टेक्स्ट कमिंग थ्रू. कभी खुशी कभी गम इज द फिल्म. सो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था वॉज व्हाट इज दैट वन फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, जिसने मुझे नेशनल एंथम सिखाया था, इंडिया की नेशनल एंथम. एंड बिकॉज आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल क्लास 7 में एंड आई ऑरिजिन यू जन गण मन बाय हार्ट एंड आई एम फ्रॉम नेपाल बाय द वे. And yeah, it was Kabhi Khushi Kabhi Gham. And guess what? Main Bachpan Mein, that was my first film ever that I watched. And my parents also recall me just sitting there. And jab bhi wo, I used to rewatch this film a lot, apparently. Or jab bhi wo bacha, when Shahrukh Khan and, I was going to say Anjali, Shahrukh Khan or Kajol ki son, the character, he starts singing Jana Gana Man, I used to repeat, I used to sing watching the TV. And yeah, that helped me because when I was in India, I went to study, I didn't have to learn. I already knew it by heart. But yeah, I think India's national anthem is definitely out there for one of the most patriotic. It makes you feel very proud of the national anthem. It's very special.

0: is Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड इफ यू आर समवन लाइक माय पेरेंट्स जिनको बॉलीवुड की गोल्डन एरा बहुत पसंद है 60s और 70s के गाने देन मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कीजिए रोवा ROVA ऑन प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज साइन अप एंड देन यू कैन लिसन टू हमारी You know, music station, jiska naam hai Hum Rewind, jahan pe it is non-stop 60s or 70s ke hits. How good! And also, just want to say a quick shout-out, kyunki ye station, Rova ki number one station hai. It's very loved. So if you haven't checked it out, you're missing out.

आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स विद समय हुआ अर्ज़ आपके साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी. इट हैज़ बीन अमेजिंग. थैंक यू. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर एंड एन ऑनर. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपका वीक अच्छा रहा एंड योर रेस्ट ऑफ द डे इज एज अमेजिंग एज यू आर. टेक केयर. आई बी बैक सून.